तक को पावा के पचे चेता आम छे वे पिछोते प्रमयं यकय हे के नम्या तालावा हा ये हे ये हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओवे ओवा के कौन मुके क्वेश्चन।